0: और इस बार भी हमारे पास एक गेस्ट है, उसको भी हम स्वागत करते हैं. संजय फ्रॉम पैसिफिक कावा लॉन्च हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं. हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह हम एक सॉन्ग प्ले करेंगे और गीत के बाद में फिर हम संजय से बात करते चलेंगे. काफ़ी खुशखबरी जो हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि पैसिफिक कावा लॉन्च जैसे आपको मालूम है क्राइस्टचर्च में काफ़ी दिन हो गए, इसको जो रेस्टोरेंट आप लोग गए भी होंगे, इट्स काइंड ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट, उसके विषय में बात करेंगे. एट द सेम टाइम दे सम न्यूज़ फॉर यू बिकॉज दे आर एडिंग वन मोर रेस्टोरेंट जो एच पैटर्न में खोलने जा रहा है, उसकी भी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे. एट द सेम टाइम आज देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ऑल ब्लैक्स इज गोइंग टू टेक ऑन फ्रांस टुडे इन साइलेजिया. अगर हमें मौका अगर दिन हम साहिल से भी उससे टिप्पणी लेंगे और साथ साथ में फीफा ऑफ कोर्स हु इज विच इज़ योर टीम और आपका टीम कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो वी विल सी कि किस टीम पे साहिल ने बेट किया है और कैसा जा रहा है, और मे बी अभी तक शायद वो टीम घर पे वापस भी पहुंच गया होगा, हु नोस, वी विल आस्क हिम फॉर दैट. एट द सेम टाइम आज जो काफ़ी इवेंट्स भी हो रहे हैं क्राइस्टचर्च में, इफ़ यू आर इन क्राइस्टचर्च आपको सिर्फ याद दिला दें कि चिल्ड्रंस हनुमान जो 40 पार्ट है ये भी हो रहा है, एंड वहाँ भी आप जा सकते हो. सो दैट्स ऑलमोस्ट ओवर नाउ जो आज होने को था हनुमान चालीसा. एट द सेम टाइम जो और एक जो पूजा हो रहा है वहाँ भी जा सकते हो, जो माँ जो बागेश्वर धाम की जो बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है वहाँ भी आप जा सकते हो. और साथ साथ में एक इन्फॉर्मेशन और हमारे पास है, विच इज़ दी गिरमिट सेलिब्रेशन, गिरमिट रिमेम्बरेंस नाइट है, इट इज़ एट टेम्पलटन हॉल एंड इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 7ish. तो अगर आपको जाना है आप जा सकते हो, फ्री फूड रिफ्रेशमेंट्स वगैरह सभी कुछ फ्री है, फ्री एंट्री है, फैमिली इवेंट है, यू कैन ऑलवेज बी पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम इज़ वेल. तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, हम एक सॉन्ग सुनते हैं जो साहिल ने सिलेक्ट किया, उसके बाद में और हम बात करते चलेंगे.
1: क्वीन विक्टोरिया की तरह,
2: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप, तो वैसे ही लगेंगी. मालिक का दिल फरेश

0: Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govice Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Client Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Dini from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको पुनः स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के प्रोग्राम में. वंस अगेन मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश, और मेरे साथ में ट्रेनिंग में साथ दे रहे हैं साहिल, और जिसे हमने बोला था हमारे जो साथ में संजय आज का गेस्ट है उससे भी हम बात करते चलेंगे. लेकिन आपको फिर से याद दिला दें जो प्रोग्राम आज हो रहा है, अगर आप जाना चाहते हो देन इट्स गिरमिट रिमेम्बरेंस डे टू नाइट रहेगा टेम्पल्टन हॉल में, विच इज 64 खेक रोड. आप जा सकते हो और उसमें जो फ्री एंट्री है, फैमिली फ्री इवेंट है, परफॉर्मेंसेज एंड काफ़ी बातचीत होगी गिरमिट के विषय में. देन फील वेलकम, आप जा भी सकते हो. एक मॉडलिंग शो या पैरेड की तरह भी होगा, एंड कुछ कुछ एग्जीबिशन भी रहेंगे. जो चीज़ें इस्तेमाल किया गया था उस ज़माने में वो भी आपको देखने को मिलेगा. सो इट्स आई थिंक क्वाइट डिफरेंटली काफ़ी ऑर्गेनाइज हुआ. देन डू गो एंड हैव अ गुड टाइम. तो गिरमिट रिमेम्बरेंस नाइट है एट टेम्पल्टन हॉल, और साथ साथ में एक जो पूजा हो रहा है जिसे आपको मालूम होगा जो लोग फॉलो करते हैं, दैट इज द बर्थडे ऑफ भागेश्वर गुरु जी. तो उसका जो ये पूजा हो रहा है टू नाइट, और 48 स्टेट मेन रोड अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो. मेरे ख्याल से जो पूजा है 5:30 ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, देन यू कैन ऑलवेज गो देयर. जो आरती वगैरह होता है उसमें भी आप टेक पार्ट कर सकते हो. तो चलो हम वी वोंट स्पेंड टू मच टाइम, बट फिर भी साहिल इज ही अभी तो साहिल से हम पूछ ही लेते. तो साहिल, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन, फ्रांस और ऑल ब्लैक्स?
1: आई थिंक इट विल बी अ वेरी क्लोज गेम.
0: क्लोज गेम,
1: व्हाट डू यू थिंक?
0: मैं वेल फ्रेंच जब भी आते हैं न्यूजीलैंड के साथ में खेलते हैं, दे आर ऑन फायर इस पे. तो डेफिनेटली इट वोंट बी इजी, लेकिन फिर भी आई थिंक ऑल ब्लैक्स शुड विन. फिर दूसरी बात ये भी है कि जब गेम होता है हमारे क्राइस्टचर्च में, देन इट इज द लकी ग्राउंड.
1: इट कैन गो आइदर वे. इट कैन गो आइदर वे, बिकॉज़ आई थिंक इज लाइक अभी फ्रेंच ने सिक्स नेशन जीता है राइट अपना, उनका जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का टूर्नामेंट होता है, राइट? सो दे आर in well form. New Zealand ka they perform better at home, but naya team hai, so it's like
0: naya coach bhi hai na,
1: naya coach hai, naya team hai, and naya combination hai, so we'll see. It can go either way, but I'm predicting a close game.
0: And what about FIFA, aapka jo team hai abhi bhi hai maidan mein ya
1: kuch hai? Kuch nikal gaye, ek to bahut pehle nikal gaye.
0: Okay.
1: आज का जो गेम हुआ, लाइक मेरे तीन में से दो देखा. पहला गेम श्रिया का था, एंड देट वॉज अ वेरी क्लोज गेम, पेनल्टी शूट आउट्स पे गया. एंड सेकंड ओवर वाज अर्जेंटीना, एंड सेकंड लग के नाम लाइक
0: आई
1: नो दैट एक्स्ट्रा टाइम एज वेल, एंड बींग फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड कप, प्लेइंग वर्ल्ड कप फीफा,
0: प्रीटी गुड.
1: They gave Argentina a very hard time.
0: Yeah, definitely.
1: So Argentina like
0: But ये जो dying stages ना, I love it, because जितने भी game हो रहे हैं ना, they are very close. Just one जो one goal वो भी end में पिलता है.
1: नहीं, but the thing is अभी जैसे काफी नया players है, like पुराने players जा रहे हैं, and teams are developing ना, काफी players को exposure मिल रहा है. So doesn't matter which country it is, the team is performing very well, and I'm actually enjoying the

0: गेम ऑफ द लोअर रैंक टीम्स जो लाइक पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे हैं या दे आर ऑन द बॉटम ऑफ द टेबल दे आर गिविंग अ वेरी हार्ड टाइम टू द टॉप टीम्स जो रैंक्ड हाई है
1: जी हाँ एंड एट द सेम टाइम काफी फोकस जो स्टार प्लेयर्स के ऊपर भी होता है सो आई थिंक मेरे लाइक जितना मैंने देखा मुझे लग रहा है कि स्टार प्लेयर्स दे आर डूइंग व्हाट दे शुड बी डूइंग सो ठीक है दे आर डूइंग
0: आई मीन दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग बट देन आल्सो थोड़ा हाइप भी ज्यादा है ना तो प्रेशर भी एकदम से होता है ना कि ओके उतना हाइप है तो परफॉर्म भी करना पड़ता है एंड या सो आई थिंक ओवरऑल इट इज गोइंग वेल एंड जो टॉप रैंक टीमें आउट हो रहे धीरे धीरे जैसे जर्मनी वो तो नहीं था बट जापान वाज देयर वाज वेरी क्लोज गेम एज़ वेल ना जो जापान ब्राजील से हारा एक गोल से पर दे आर लाइक बिग टीम्स जो बाहर जा रहे हैं एंड स्मॉल टीम्स आर डूइंग वेरी वेल एंड इसमें एक वो था ना एक मैं शो ही पढ़ा था तो जो यूरोपियन टीम है उनका कोचेज एंड जो फेडरेशन है दे वेरी कंप्लेनिंग ना कि दे शुड गिव चांसेस लाइक देयर 16 टीम्स फ्रॉम यूरोप प्लेइंग एंड देयर इज आई थिंक अबाउट 9 टीम्स फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ना सो दे वर लाइक इनका सोका खराब है इनका उतना है ही नहीं रहा तो दे शुड गेट दैट मेनी प्लेसेस और यूरोपियन टीम का सोका लाइक दे आर टॉप सोका टीम्स ना जो यूरोप में होता है एंड दे शुड बी एक्चुअली गेटिंग मोर प्लेसेस इन द वर्ल्ड कप टू प्ले
1: But African teams are there.
0: They are kind of like at the bottom, right? अच्छा perform नहीं कर रहे हैं वो सब रहा. And इस World Cup पे
1: उल्टा हुआ.
0: The African teams are actually perfect better than European teams.
1: Yeah, which is great. तो चलो साइलो मैं quickly एक जो song सुनते हैं उसके बाद में we'll get our guest जो संजय उसे भी हम बात करते चलेंगे because he's quite a busy chef हम कहेंगे काफी busy person है और उसको फिर वापस जाकर है जो काफी orders आया हुआ है उसको वो भी करना है.
0: जी

0: addressing requirements and contact T. Nandan of Go Wise Driving School if you need driving lessons, and contact Anshul Gupta of Klein Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property, and contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city, and contact Danny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements.
1: जी हाँ दोस्तों, साथियों को स्वागत करते हैं चलता फिजी रेडियो के 706 प्रोग्राम में। मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश, और जो लोग हमारे साथ में भी फेसबुक में जुड़ रहे हैं उनको भी स्वागत करते हैं और शुक्रिया करना चाहते हैं साहिल को, हु इज होल्डिंग द कैमरा, और हमारे साथ में आज पैनलिंग भी कर रहे हैं। जैसे हमने शुरू में मेंशन किया था, जो लोग हमारे साथ फ्रिक्वेंसी में थे कि जो गेस्ट है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एंड ही इज संजय फ्रॉम पैसिफिक कवालॉन्स। तो संजय, आपकी पहली मरतबा है आने के लिए, शुक्रिया आने के लिए। आई नो आज तो एक्चुअली गेम भी है, फ्रांस वर्सेस ऑल ब्लैक्स, एंड इट्स क्वाइट बिजी। हमें पता आपका रेस्टोरेंट फुल ऑन बिजी होता है, और फिर भी आपने समय निकाल के आया, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है आपको भागना भी है, बट दिस सम न्यूज दैट संजय हैज एंड ही वांट्स टू शेयर विद अस। इसने हमने बोला कि काफी अच्छा रहेगा इफ यू कम ऑन बोर्ड एंड टेल अस मोर अबाउट इट, ताकि हम वो जो समाचार आपके साथ हम शेयर कर सके। तो आप बताइए, जो आपका यहाँ का जो रेस्टोरेंट है, दैट स्पेसिफिक कवर लॉन्च, कौन से एड्रेस पे?
2: 17/113 कैथेड्रल जंक्शन।
1: जी हाँ, यहाँ से बहुत दूर नहीं है,
2: ज्यादा दूर नहीं है जस्ट।
1: जी हाँ जी हाँ, और आई थिंक दैट्स मोर लाइक इंडियन डिशेस आप बनाते हैं?
2: इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स, फिजियन इंडियन भी बनाते हैं हम, और लाइक मोस्टली लाइक फोकस ऑन इंडियन डिशेस।
1: जी हाँ,
2: बट अभी तक जो लोगों का रिस्पॉन्स है फिजी इंडियन करीज के लिए, बहुत अच्छा है। स्पेशली हमारा जो गोट करी है उसके लिए काफी अच्छा रिव्यूज और लोगों की बहुत अप्रिसिएशन आ रही है उस चीज के लिए।
1: जी हाँ, वैसे आप लगते नहीं क्या फिजी को?
2: मैं फिजी से नहीं, मैं इंडिया से
1: हूँ। लेकिन जो फिजी का जो जिस तरह हम खाना नो खाते हैं, आपको पता है?
2: जी क्योंकि मेरे जो बॉस है वो सूर्या जी, वो फिजियन है, तो उनका ही कॉन्सेप्ट था जो रेस्टोरेंट के, जो कावा का कॉन्सेप्ट था। तो अभी तक लाइक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कावा के लिए भी, प्लस फिजी फूड के लिए भी, तो थैंक्स टू हर।
1: तो क्या होता है, लोग लाइक आते हैं एंड देन दे हैव फूड एंड ड्रिंक कावा, या हाउ डज इट वर्क?
2: सो सम टाइम जब लाइक किसी को कावा पीना है तो जस्ट कावा के लिए ही आते हैं, मोस्टली लाइक कावा के साथ फूड भी इंजॉय करते हैं, और हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स कीवीज से भी मिल रहा है, जो यहाँ के कीवीज हैं वो भी बहुत अच्छा कावा को रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि इट्स अ वेरी कामिंग ड्रिंक।
1: जी हाँ, और साथ साथ में ऑब्वियसली आई गोन टू द रेस्टोरेंट, हमने जो पूल वगैरह देखा है, आई एक्चुअली आई ट्राइड बट आई एम क्वाइट बैड एट दैट, बट उसका कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, गेम्स वगैरह जो आपने रखे हुए हैं?
2: जी, उसका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, एज फॉर लाइक पीपल लाइक जब भी अपने खाने के लिए वेट कर रहे हैं तो लाइक उनको स्पेयर टाइम में वो पूल खेल सकते हैं, तो उनको वो भी एक बहुत अच्छा एडिशन है हमारे रेस्टोरेंट के लिए, तो अभी तक सब सही चल रहा है।
1: जी हाँ, और वैसे तो पैसिफिक कावा लॉन्च है, बट मेरे ख्याल से कावा के अलावा भी काफी कुछ है ना वैसे ड्रिंक्स वगैरह में?
2: जी, हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटीज ऑफ वाइन, लोकल, इंटरनेशनल।
1: दिस इज मोर लाइक अ वाइन रेस्टोरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटी आप लोगों के पास है। व्हाट अबाउट कैटरिंग, बिकॉज आई नो दैट्स अनदर बिग थिंग हैपनिंग हियर एज वेल, क्योंकि लोग जब वेडिंग्स हो या बर्थडेज वगैरह कुछ होते हैं, डू डू दोस थिंग्स?
2: यस, वी डू डू द कैटरिंग्स एंड ऑल। अभी हमारे पास नेक्स्ट मंथ, सॉरी दिस मंथ के लिए हमारे लिए एक फिजियन कैटरिंग आ रही है, तो हम सब फिजियन फूड बना रहे हैं उसमें, क्योंकि एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर। सो अभी देखते हैं क्या, पर ये कि जैसे आपको कोई भी ओकेजन करनी है, चाहे बर्थडे है, चाहे एनिवर्सरी है, चाहे कुछ भी है, आप आ सकते हैं कभी भी, और आप अपनी फैमिली को लाइए। और
1: जी, और अगर मेन्यू में देखिए तो कौन कौन फिजियन डिशेस है हमारे लिए?
2: आपके लिए है कावा चिकन, कावा गोट, कावा लैम, और फिजी स्टाइल चॉप सॉय।
1: ओके, बट इसमें आप कावा तो नहीं मिलाते होंगे?
2: नहीं, कावा नहीं।
1: ओके,
2: काफी लोगों को इस चीज का हुआ है कि हम लोग कावा मिक्स करके दे रहे हैं, लेकिन बट एक्सप्लेन करोगे तो क्या ये? जी
1: डेफिनेटली, अभी जंगली मुर्गी आपने नहीं डाला ना?
2: अगली मुर्गी भी डाल देंगे आप बोलोगे तो।
1: जी हाँ बिल्कुल, और जी हाँ, जिसे आपने सुना है, और बिफोर आई मूव टू द अदर वन, इसका टाइम क्या है, कब खुला रहता है आपका, या कितने देर तक पीपल कैन स्टे देयर? आई थिंक देयर विल बी अ बेटर क्वेश्चन।
2: हमारा रेस्टोरेंट शाम को 5 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक ओपन रहते हैं। अगर किसी ने कावा के लिए स्टे बैक करना है तो वी कैन प्रोवाइड दैट फैसिलिटी एज वेल, तो वी कैन स्टे टिल 2-3 AM व्हाटएवर, एंड यप।
1: Oh, that's fascinating. And actually, if you compare the size, जो अंदर का जो एरिया है, I think it's quite decent, काफी अच्छा बड़ा एरिया है। तो अगर किसी को पूरा बुक करना है, can they do that?
2: Yes, absolutely.

0: absolutely. They can do it.
1: They can hire, yeah. Hire, yeah. The whole, hire the whole place. Yeah. Yeah. Vis kafi log usme aa sakte na kitne
0: log around 60 to 70 people yeah. Easily.
1: Yeah.
0: We can accommodate.
1: I mean agar aap bethre agar throw karte aaj ke I think tarikh mein that's quite a decent number feed karne ke liye. Yeah, no, definitely if you want to talk to Sanjay or jisse uske jo boss hai Surya agar baat karoge then they can obviously come to some sort of a deal for you. So there is a specific Kava Lounge aur uske sath sath mein now we are going to talk about something quite interesting, coffee fascinating. I know there is something that especially Ashwetan they would have been waiting for, to aap uske vishay mein bataiye.
0: So for Ashburton community, हम 12th of July को हमारी Pacific Akava Lounge की second branch जो कि Ashburton में आ रही है 78 Tankard Street. So 12th of July को हम 2 बजे से 8 बजे तक grand opening करने जा रहे हैं और 14th July को official opening है. तो आप सबका you are all invited. तो 2 से 8 आप कभी भी आइए, enjoy करिए, Kava drink. Beers or food as well, and
1: और अगर यहाँ से compare करें क्रश से, so वहाँ का जो dishes है it is very similar कि उसमें और भी varieties वगैरह
0: उसमें जो हमारा Fijian Indian menu है वो तो same है, plus जो Indian menu वो भी same है. हम addition कर रहे हैं European cuisine को because there was a lot of demand of steaks and all, so we are adding those dishes as well. So it's kind of a mixed cuisine.
1: तो yeah, or I know people jab aate hain unko music pasand hai, who knows maybe karaoke agar kuch hoga is that kind of yes. Facility ho sakta
0: ji hum karaoke aur hamare 8th of August ko Bollywood night hai DJ Gideon
1: yeah.
0: So wow, wo aa rahe hain wahan par aur wahan par
1: ji abhi to achhi tarah opening hi nahi hua but already aapne
0: ek Gideon plan
1: there is very exciting. Yes. Moving quite fast, to aisa lag raha hai ki Ashburton ka jo feedback hai kafi badhiya mil raha hai
0: ji. अभी तक जो हमारे पेज हमने जो अभी क्रिएट किया है उसके हिसाब से तो हमारे को लाइक अच्छे व्यूज आ रहे हैं. अभी तक क्लोज टू 100 फॉलोअर्स हमारे आए हैं अभी पेज पे, तो होपफुली विल गेट अ गुड रिस्पांस फ्रॉम द एशबर्टन कम्युनिटी.
1: जी हाँ बिल्कुल, तो आपको फिर से याद दिला दे इट इज़ पैसिफिक कावा लॉन्च का जो सेकंड हम कहेंगे एडिशन जो लोग करने जा रहे हैं विच इज़ ए ग्रैंड ओपनिंग. जो रेस्टोरेंट होगा वो 12th ऑफ जुलाई, नॉट फार फ्रॉम हियर. अभी हम जुलाई आई थिंक शुरू हो चुका है, सो वी आर ऑलरेडी ऑन जुलाई. हाँ, तो नेक्स्ट वीक की हम बात करें ना, ये रहेगा संडे को 2 PM आप पहुँच सकते हो, बट 2 PM टू 8 PM भी तक रहेगा. एंड इट इज़ 78 Tankard स्ट्रीट. आई एम श्योर इट्स नॉट हार्ड टू फाइंड बिकॉज एशबर्टन में तो आप ढूंढ ही लोगे.
0: इट्स मिडिल ऑफ द टाउन.
1: जी ठीक है, तो इट्स मिडल ऑफ द टाउन इज संजय साइस, तो आप जा सकते हो एंड कावा तो डेफिनेटली वुड बी देयर. और वहाँ भी इसी तरह बार सेटअप होगा.
0: जी
1: जी हाँ, तो इट्स काइंड ऑफ
0: अ रेस्टोरेंट बार एंड अ पब.
1: जी हाँ, सो फ्रॉम 2 to 3 आई गेस दैट्स गोइंग टू बी अ फॉर्मल काइंड ऑफ ओपनिंग का कुछ टाइम.
0: 2 से 8 बट 14th से जो हमारा जो है ऑफिशियल ऑफिशियल ओपनिंग है, तो वो लाइक सुबह 11 बजे से शाम को 1 बजे, रात को 1 बजे तक शायद.
1: ओके, सो द टाइम ओवर देयर इज मोर लाइक एक्सटेंडेड टाइम है.
0: जी
1: ओके, सो दैट मींस वहां पे लंच वगैरह भी मिलेगा.
0: लंच मिलेगा, लंच डिनर ब्रंच सब कुछ है वहां पर. हम एडिशन करना हम कोशिश करेंगे, हम ब्रेकफास्ट को भी ऐड करा जाए उसके अंदर, क्योंकि देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा आता है पहले.
1: ठीक है, सो ये हम बात करते हैं पैसिफिक कावा लॉन्ज, बट जस्ट बिकॉज संजय इज हियर एंड वी आर सपोज टू आस्क सम हार्ड क्वेश्चंस एज वेल, वी सम यू नो इतनी आसानी से आपको नहीं जाने देंगे. सो वी विल डेफिनेटली
0: आस्क, और हमारा एक और प्लान है वो भी
1: थर्ड रेस्टोरेंट.
0: अब हम उसको नहीं हो कर सकते हैं, डिस्क्लोज नहीं कर सकता.
1: ओके,
0: बट लाइक बहुत जल्द एशबर्टन को भी लाइक एशबर्टन में हम कुछ बड़ा करने
1: और भी बड़े करने जा रहे हो, बट अभी आपने सूर्या का अप्रूवल नहीं है क्या? आप बताओ.
0: अप्रूवल है, सब कुछ है, बट हम जस्ट वेट कर रहे हैं अभी.
1: ओके,
2: विजय के साथ बातचीत को मजेदार और थोड़ा चुनौतीपूर्ण बनाते हैं. एशबर्टन के बड़े प्लान के बारे में जानने का इंतजार रहेगा. आप संजय से क्या पूछना चाहते हैं? शुरुआत करें.
1: ठीक है, I don't know where that was coming from. Is that AI?
0: Don't know.
1: Maybe किसी का फोन था, maybe आपका फोन होगा. ठीक है, तो AI is here. It is amongst us. AI हमें सुन रहा है और हमसे बात भी कर रहा है. But anyway, वो जो AI पूछ रहा है, actually मैं संजय से ये पूछना चाहता था कि हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं डिनर करने के लिए, लंच करने के लिए, one thing मैं हमेशा वही करता हूँ, मैं पूछता हूँ जाकर कि can I have coffee? तो हरदम आंसर नहीं रहता कि नहीं, उसमें कॉफी नहीं मिलता है. व्हाई इज दैट?
0: बिकॉज कॉफी इज लाइक इतना हार्ड नहीं है बनाने के लिए, बट लाइक बहुत मुश्किल है लाइक कॉफी और अल्कोहल और सब कुछ एक साथ करने के लिए. तो जो हमारा जो एशबर्टन में जो हमारा रेस्टोरेंट है वहां पर जरूर हम कॉफी सर्व करेंगे.

0: ओके
1: तो आपकी जो ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई.
0: एग्जैक्टली, बिकॉज मुझे लग रहा है कि व्हाई इज दिस एंटी कॉफी. जब भी मैं कॉफी ढूंढने जाता रेस्टोरेंट ना, यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको कॉफी शॉप ढूंढना पड़ता है.
1: हमने चाय जरूर रखी हुई, चाय पी जरूर.
0: जी हाँ, बट जो आप चाय रखते हो रखते हो ना, जो मसाला टी,
1: मसाला टी, हाँ,
0: तो उसमें आप ऑलरेडी बनाते हो ना, उसमें पॉट में शुगर वगैरह जो मिला होता है. तो हम जब डाइट मांगते हैं तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है.
1: और जो हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी 110% कॉफी.
0: आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट उसमें इमली का चटनी रहेगा
1: सब कुछ.
0: ओके,
1: आपको एक सरप्राइज देना है
0: जी. आई थिंक ये जो आप थेट जो बताने जा रहे हैं, मे बी इट्स फॉर मी. जी हाँ, दैट्स एक्साइटिंग. दैट इज संजय, हम कहेंगे ही इज काफ़ी एक्सपीरियंस शेफ हम बोलेंगे, बिकॉज आई हैव एक्चुअली टेस्टेड फूड. मैं आया भी था और एक्चुअली मैं बैठा था, बना रहे थे.
1: हमने कैटरिंग भी करी.
0: जी हाँ, कैटरिंग भी आपने की है. सो आई कैन एक्चुअली से दैट नॉट डेफिनेटली द फूड इज ए ग्रेट. यू कैन टेक माई अश्योरेंस एंड कॉन्टेक्ट देम. पैसिफिक कावा लॉन्च आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और जा भी सकते हो. और एक ग्रैंड ओपनिंग मिस मत कीजिएगा. अगर इफ यू अंडरमाइन इट जस्ट लाइक वन आवर ड्राइव, और अभी तो फ्यूल प्राइस हैज कम डाउन अ लिटिल बिट, तो व्हिच माइट बी अ बिट हेल्पफुल. बट आई नो मेनी पीपल आर लिविंग इन रोल्स्टन दिस डेज, सो आई थिंक रोल्स्टन से एजवेटन बहुत दूर नहीं पड़ता होगा.
1: जी प्रोबब्ली लाइक 25 मिनट्स का.
0: हां
1: तो इतना दूर नहीं है तो.
0: जी हां,
1: Rolston be invite us cheese
0: ke liye. Exactly, so, because abhi wahi to hamara jitna events bhi ho raha hai. Now they are choosing Templeton because wo kafi central hota na. Elsewhere or even Lincoln se bhi agar jana chaho to udhar se bhi aapko easy hota na, udhar bypass kya road ban
1: gaya. Ji abhi wo Rolston se unhone bypass nikala to कट डाउन हो गया टाइम बहुत.
0: जी सो इट्स ऑन अ संडे. अगर आपने कुछ कर रहे हो देन इट्स 12th of July और सैटरडे को तो काफी बिजी होते हैं. बट इट्स अ संडे एंड यू कैन बी देयर लाइक 2 PM टू 8 PM तक रहेगा. एंड देन देयर इज इवन अ गुड टाइम फॉर यू टू कम बैक एंड ऑफ कोर्स प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट मंडे. तो 12th of July नॉट टू बी मिस्ड. इट्स 7810 Crandall Street और हम आपको बधाई देना चाहेंगे. देयर इज क्वाइट अ न्यू एडिशन और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका जो आपने अभी जो सरप्राइज बोला है तो भी हम सुनने की जो कोशिश करेंगे. तो फिर विल गेट बैक किया तो फिर हम आपसे और भी बात करेंगे. तो चलो ये थे संजय. और जाते जाते संजय जो लोग हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं एक्चुअली, उनसे आप कुछ अगर बोलना चाहोगे
1: तो आप जरूर आइए हैशपैडन में 2 to 8. हमारे रेस्टोरेंट को लाइक सपोर्ट की जरूरत है आपके. आप ही का सपोर्ट होगा तभी हम आगे जाएंगे और होपफुली हम आप लोगों को लाइक एक अच्छा फूड एक्सपीरियंस लाइक क्वालिटी एंड क्वान्टिटी एवरीथिंग अच्छा हो आपके लिए. प्लस कावा नॉट टू बी मिस्ड, क्योंकि कावा हमारे लाइक जो हमारा फर्स्ट रेस्टोरेंट है उसकी वजह से हमने दूसरी ब्रांच खोली कावा की. तो कावा इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. सो प्लीज़ डू विजिट एशबर्टन. एंड लास्टली मैं शाउट आउट देना चाहूँगा अपनी टीम को. थैंक्स टू रेनू शेफ अक्षय, ही इज़ अ न्यू एडिशन टू आर टीम. एंड विशाल, what's the name? Forgot.
0: आपका अच्छा दोस्त.
1: मेरा अच्छा दोस्त.
0: जी हाँ,
1: तो जरूर आप जरूर एक बार विजिट करिए और हमें एक चांस दीजिए कि हम आप लोगों को प्रूव कर सकें कि हम लाइक एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको डिलीवर कर सकते हैं.
0: थैंक यू सो मच. एंड देयर वाज संजय फ्रॉम पैसिफिक कावा लॉन्ज. जैसे आपने सुना उसका एक रेस्टोरेंट यहाँ क्राइस्टचर्च में. द सेकंड वन इज ओपनिंग ऑन 12th of July रहेगा 7810 Crandall Street और 2 PM टू 8 PM आप जा सकते हो. सो गो विद द होल फैमिली एंड हैव अ गुड टाइम. और संजय हैज अश्योर्ड अस कि बहुत जल्द उसके मेन्यू में कॉफी भी एड होने वाला है. तो चलो हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि संजय को वापस जाना है एंड ही हैज टू डू अ लॉट ऑफ वर्क और फिर अपने दोस्त का नाम भी उसको याद करना है. तो चलो शुक्रिया करते हैं आपको आने के लिए. एंड साहिल थैंक यू फॉर पैनलिंग. हम मिलेंगे किसी दिन किसी और वीडियो पे. बट आज जो हमें फ्रीक्वेंसी पे सुन रहे हैं यू कैन कीप लिसनिंग बिकॉज हमारे पास से कुछ बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं. एंड ऑफ कोर्स यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ न्यूज फ्रॉम साहिल बिकॉज उसके पास तो जो खेल कूद भी चल रहा है फीफा, ही हैज गॉट ऑल द डिटेल्स जो हम उसे सुनने वाले हैं. तो थैंक यू सो मच. फिर मिलेंगे किसी और दिन. सो वी विल प्ले अ सॉन्ग नाउ.

Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames, Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of GoWise Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Klein Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Dini from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी हाँ दोस्तों, सत्य है विनेश फ्रॉम जलसा फिजी रेडियो, और आशा है कि अभी जो हम बात कर रहे थे संजय जी से आपको पसंद आया हुआ होगा। फिर से याद दिला दे पैसिफिक कावालों जिसका जो ग्रैंड ओपनिंग है 12th of July। जी हाँ, हमारे पास कभी कभी वक्त कम हो जाता है जब हमारे पास गेस्ट वगैरह होते हैं और हम कुछ सॉन्ग्स कम बजाते हैं, लेकिन आज सैटरडे, आई नो इट्स अ पार्टी टाइम एंड यूड बी वांटिंग टू नो कि साहिल के पास कौन कौन और से गीत है जो आपको सुना सकते हैं। तो साहिल हैज गॉट समथिंग फॉर अस, तो सुनते हैं ये गीत, फिर हम साहिल से क्वेश्चन करेंगे कि क्यों उसको ये गीत पसंद है।

0: Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of GoWise Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Client Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Danny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements.
1: जी हाँ दोस्तों, साथी आप सुन रहे हो जलसा फिज रेडियो, और आशा है कि गीत आपको पसंद आया होगा। तो मेरे ख्याल से नया गीत है ना साहब?
2: नया, अभी ये मूवी नया निकला है, एक हफ्ता हुआ
1: जी।
2: वेलकम टू द जंगल, अक्षय कुमार।
1: वेलकम टू द जंगल, अक्षय कुमार।
2: सो इट्स सपोज्ड टू बी सीक्वल टू वेलकम वेलकम बैक एंड वेलकम टू जंगल, लाइक सेम डायरेक्टर, सेम वो है सब, बट टोटली डिफरेंट है।
1: ओके, बट डिड यू लाइक द मूवी?
2: इफ यू लुक एट इट,
1: कि आप थोड़े बड़े हो गए, थोड़ा छोटा होता तो शायद अच्छा लगता।
2: लेट मी एक्सप्लेन दिस वे। अगर मूवी देखने जा रहे हो तो दिमाग थिएटर के बाहर छोड़ के जाना, जस्ट गो फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, राइट? लॉजिक मत ढूंढना उसमें। एंड सेकंड थिंग, अगर ये मूवी देख रहे हो, ट्रीट इट एज अ इंडिविजुअल मूवी, डोंट थिंक अबाउट वेलकम और वेलकम बैक, क्योंकि उससे बिल्कुल अलग है। सो इफ यू आर एक्चुअली कंपेयरिंग टू वेलकम एंड सीक्वल अगर देख रहे हो तो इट्स अ वेरी बैड मूवी।
1: मैंने सीक्वल का वही बोला, लाइक जितना सीक्वल मैंने देखा है, आई ऑलवेज गो बैक टू नंबर वन। जो फर्स्ट है, मुझे वही हर बार अच्छा लगा,
2: बट इसका मुझे फर्स्ट भी अच्छा लगा, सेकंड भी अच्छा, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड का जो स्टोरी था डिफरेंट था, बट इट लिंक्ड ऑन ना, कि वहां से मतलब अक्षय कुमार का कैरेक्टर खत्म हुआ एंड देन जोन अब्राहम का कैरेक्टर स्टार्ट हुआ, एंड दैट वाज अ टोटली सेपरेट स्टोरी, बट कैरेक्टर्स एक्चुअली लिंक्ड ऑन ना। जो
1: तो इसमें अक्षय कुमार इज देयर, बट और कोई
2: इसमें डायरेक्टर्स है?
1: ओके,
2: सो देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टर्स इन Watch the movie to see ki what I'm trying to explain. I don't know how to explain it nicely.
1: No, sabhi sabhi ka apna kya hota hai. Anyways,
2: it's jaise kabhi kabhi

0: डायरेक्टर डालने से मूवी का मतलब वो हो जाता है, क्या कहते हैं, यू लूज सॉर्ट ऑफ दैट मेन कैरेक्टर का जो वो होता है ना, जो मेन स्टोरी होता है. हाँ, पर इसमें वो चीज नहीं, लाइक इट डज हैव लाइक कैरेक्टर्स, छोटा मोटा कैरेक्टर्स है, इधर उधर ढेर कैरेक्टर्स है, दे ऑल हैव देयर लाइंस एंड इट ऑल लाइक अगर दिस वन से लाइक इफ यू ट्रीट इट एज अ मूवी ऑन इट्स ओन, डोंट थिंक अबाउट वन और टू, अलग से दिमाग बाहर छोड़ के जाओ, इट ऑल मेक सेंस काइंड ऑफ, बट हाँ इट्स बेसिकली यू जस्ट गोइंग देयर फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस.
1: जी हाँ ना, थैंक यू सो मच साहिल जी. और बताइए कि नेक्स्ट सॉन्ग आप कौन सा सुनाने जा रहे हो.
0: सुन लो तो फिर
1: सुन लेते हैं.
0: बाकी.
1: ओके.

0: Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govice Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Client Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Danny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements.
1: जी हाँ दोस्तों साथियों, यह है जलसा फिजी रेडियो और आशा है कि जुग्गी तभी साहल ने प्ले किया आपको पसंद आया हुआ होगा. और साहल, व्हाट आई वांटेड टू आस्क इज दिस इज नाउ आवर विंटर. जी हाँ. तो कैसा लग रहा है विंटर की तरह आपको लग रहा है कि आपको लगता है कि वो ठंड होना चाहिए?
2: आई डोंट नो, आई मीन लास्ट ईयर भी तो आई थिंक इवन समर इज वेरी अप एंड डाउन एज वेल. सो समर में ठंड पड़ रही है, विंटर में गर्म पड़ रही है.
1: जी हाँ, दो वी आर फीलिंग कोल्ड, लेकिन कहा जाता है कि द विंटर इज नॉट कोल्ड इनफ क्योंकि इट इज अफेक्टिंग ग्रोइंग ऑफ सर्टेन फ्रूट्स वगैरह ना, जो फ्लावरिंग.
2: हाँ, इट्स अ वार्मर विंटर.
1: हाँ
2: हाँ, वही तो, इट्स अ ग्लोबल वार्मिंग.
1: जी हाँ, बट वी आर नॉट, आई एम पर्सनली आई एम नॉट कंप्लेनिंग.

0: Employments and Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance, and contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs, and contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs, and contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements, and contact T. Nandan of Govice Driving School if you need driving lessons, and contact Anshul Gupta of Klein Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city, and contact Dini from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी हाँ, तो सकते हैं दिलसा फीजी रेडियो, और समय पे अगर देखा जाए तो वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड देयर, जब हमें आपसे अलविदा लेना पड़ता है इस वादे के साथ में कि नेक्स्ट डे हम इसी तरह जुड़ जाएंगे फ्रॉम 5 to 6 PM. सो जुड़ जाइए, और साथ साथ हमारा जो टैलेंट सीरीज भी आ रहा है 16th of July, देन यू कैन सी दैट ऑन फेसबुक लाइव, और जितने भी कलाकार आपकी बार आए हैं उनको हम ऑल द बेस्ट कहेंगे, और साथ साथ अपने सभी स्पॉन्सर्स को हम शुक्रिया करना चाहेंगे जिसके बदौलत ये हम जो सीरीज कर रहे हैं. तो चलो, काफ़ी समय हो चुका, हम आपके लिए लास्ट गीत बजाते थे, उसके बाद में फिर मिलेंगे किसी और दिन, यहाँ पे मिलेंगे प्लेन से स्टूडियो पे, अदरवाइज जैसे हम वीडियोस लाते रहते हैं, इफ़ यू हैव सम न्यूज़, कुछ ऐसा कुछ हमारे हाथ में आता है जिससे हम कुछ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सके, वी विल कम लाइव. एट द सेम टाइम वी आर हैविंग अवर KYC सेगमेंट्स, सो नो योर कैंडिडेट्स, वो वीडियोज़ भी हम डालते रहेंगे सो दैट यू कैन नो योर कैंडिडेट्स, एंड बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन ईयर. तो चलो, शुक्रिया, शुभरात्रि, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ में.
1: ये पता चला है कि 50 करोड़ की रकम एक चटनी की गोनियों में छुपाकर MG गाड़ी में रखी गई, और मजे की बात ये है, ये कैश जिसे मिला वो पैसा उसका.